किया सब होए। तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए।

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहिले। रखो रखन हार दयाला, नानक करके गुले।

0: गवाया।
1: सात सुख मन लाए वसया जन इच्छा साव पजाया।
0: सदा कुर्बान किता गुर बिटो जिस दिया ए वडियाया।
1: कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो।
0: वाजे पंच शब्द तितका

सर्वकृष्ण नमो सर्वरंगे दृभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं परसिजे।

पहुँचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्रता, किल बिख सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज जब पै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई।

शरण तुम्हारी अस तुम ही सजन सुहेले रखो रखन हर दयाला नानक करके गोले तर जियरे एक टेक तो लहे बडहनी आस

0: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो,
1: कल क्लेश तन माहे मिटावो,
0: सिमरो जास विशंबर एकै,
1: नाम जपत अगंत अनेकै।

0: अखंड पृथ्वी प्रे चिर जीवे
1: महा उदास तपी सर थीवे
0: अगन में होमत प्राण
1: कलंक अस है वर कुण दान
0: नेवली कर्म करे बवासन
1: जैन मार्ग संजमे अत साधन
0: निमक निमक कर शरीर कटावे
1: तापी हमे मैल न जावे
0: हर के नाम संसार कछ नाहे
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
0: मन कामना तीर्थ दे छुट्टे
1: गर्व मन न मनते हुडे
0: सोच करे दिन सौर

0: सर्व सगल में श्रेष्ठ धर्म,
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म,
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया,
1: साध संग दुर्मत मल हिरिया,
0: सगल उद्यम में उद्यम भला,
1: हर का नाम जपो जी सदा,
0: सगल वाणी में अमृत वाणी,
1: हर को जस रसन बखान

0: बुझारत बूझे डोरा
1: निस्कहियो तो समझे पूरा
0: कहां बिसनपद गावे गोंग
1: जतन करे तो पीसर पंग
0: पिंगल पर्वत पर पवन
1: नहीं हो तुहा उस गवन
0: करतार करुणा में दीन बेनती करे
1: नानक तुमरी कृपा तरे
0: संग सहाय सो आवे न चीत
1: जो वैराई तास्यो प्रीत
0: बलुआ के गृह पीतर बसे
1: अंध के माया रंग रसे
0: कर मान मन प्रतीत
1: वैर
0: ब्रोध काम क्रोध मोह
1: झूठ बेकार महालोभ द्रोह
0: याहू जुगत बिहाने के जन्म
1: नानक राग रे अपन कर कर्म
0: ठाकुर तुम पह अरदास
1: जियो पिंड सब तेरी रास
0: मात पिता हम बारिक तेरे
1: तुम्हारी कृपा मैं सुख कनेरे
0: कोई न जाने तुमरा अंत
1: ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरा

0: प्रसाद छत्ती अमृत खाहे।
1: तिसा कर को रख मन माहे।
0: यह प्रसाद सुगंध दिन लाव है।
1: इसको सिमरत परम गत पावे।
0: यह प्रसाद बसहे सुख मंदर।
1: इसहे त्याई सदा मन अंदर।
0: यह प्रसाद गृह संग सुख बसना।
1: आठ पहर सिमरोह सरसना।
0: यह प्रसाद रंग रस पूग।
1: नानक सदा त्याई त्यावन जोग।
0: यह प्रसाद पाठ क्रम ब्रहण आवे।
1: इसहे त्याग का तवर लुभावे।
0: यह प्रसाद सुख सह सोई जे।
1: आठ पहर ताका जस गावी जे।
0: यह प्रसाद तू सब

0: की जात
1: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात
0: प्रसाद तेरी पत्र है
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे
0: जय प्रसाद सुने कर नाद
1: जय प्रसाद देखे विस्माद
0: प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख जय बसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है
1: जय प्रसाद

0: प्रभु समानी
1: संग अगोचर मिले
0: साध के संग सदा पर फुले
1: साध के संग आवे बस पंच
0: सार संग अमृत रस पंच
1: सार संग होए सब की रेन
0: साध के संग मनोहर बैन
1: साध के संग ना कत हूं तावे
0: सार संग जस्तत मन पा

0: प्रभु बन आई।
1: साज के संग ना कब होता आवै,
0: साज के संग सदा सुख पावै।
1: साज संग अवस्था गोचर लह,
0: साधु के संग अजर सह।
1: साज के संग बसे स्थान ऊंचे,
0: साधु के संग महल पहुंचे।
1: साज के संग दृढ़े सब धर्म,
0: साज के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साज के संग पाए नाम निदान,
0: नानक साधु के कुर्बान।
1: साज के संग सब कुल आधार है,
0: साज संग साजन मीत।

ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जोगता।

अनिले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी अहम बद त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ

0: तब लग धर्म राय देश जाए।
1: फटे बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छूटे।
1: फटे लख कोट तावे
0: तृप्त न आवे माया पाछे पावे।
1: भोग भिक्षा के करे
0: न तृप्तावे खप खप मरे।
1: नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ ब्रिथे सब काजे।
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: बड़ भागी किसे।

0: संत के दुखन आर जा कटे,
1: संत के दुखन जमते नहीं छूटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन शोभा देहीन,
0: संत के हते को रखे ना कोए,
1: संत के दुखन थान प्राप्त होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संत संग निंदक भी करे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काग जो लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिगिर जोन किरमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब को चले,
0: संत के दुखन ते सब जाए,
1: संत के दुखन नीच नीच आए,
0: संत दुखी का थोको नाहे,
1: नानक संत पावे ना होए बिगत पाए,
0: संत का निंदक महा अतताई,
1: संत का निंदक खिंडिकन न पाए,
0: संत का निंदक महा हत्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राज ते हीन,
1: संत का निंदक दुखियार दीन,
0: संत के निंदको सर्व रोग,
1: संत के निंदको सदा वियोग,
0: संत की निंदा दुख में दुख,
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
0: संत का दुखी सदा अपवित,
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब त्यागे,
0: संत का दुखी महाहंकारी,
1: संत का दुखी सदा भिकारी,
0: संत का दुखी जन्मे मरे,
1: संत की दुख ना सुख के डरे,
0: संत के दुखी को नाही ठाओ,
1: नानक संत पावे ता ले मिलाए,
0: संत का दुखी अद्वीच ते टूटे,
1: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे,
0: संत के दुखी को ध्यान परमाइये,
1: संत का दुखी उजड़ पाइये,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: जो सास बिना मिटे की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किछ नाहे,
1: अपन बीज आपे ही खाए,
0: संत के दुखी को अवर न राखन हार,
1: नानक संत पावे ता ले उबार,
0: संत का दुखी ओं बेलाए,
1: जो जल में उन मछली लड़ फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: जो पाव की दन्नी त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: जो मुआर तिल खेत माहे दुहेला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सद मिटिया कहत,
0: व्यर्थ निंद का तुर ही पिया,
1: नानक ज्योतिष पावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिकट रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइए,
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए,
0: संत के दुखी की पूजे ना आसा,
1: संत का दुखी और चले नासा,
0: संत के दुख ना दृष्टे कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: दया करत ना मेटे कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब कर तिसके ओ करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: प्रभु की उस्तद करो दिन रात,
1: तिसे त्यागो सास ग्रास,
0: सब किस बरते तिसका किया,
1: जैसा करे तैसा को थिया,
0: अपना खेल आप करने हार,
1: दूसर

0: सुख होए,
1: जिसका नाम रख कंठ पर होए,
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए,
1: नानक बिन न लागे कोए,
0: उस्तत मन में कर निरंकार,
1: कर मन मेरे सत व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो,
1: सदा सहेला कर ले जियो,
0: नैनो पेख ठाकुर का रंग,
1: साध संग बिन से सब संग,
0: चरण चलो मार गोबिंद,
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद,
0: हर हर कर्म श्रवण हर कथा,
1: हर धन्य नानक उज्जल मथा,
0: बड़ पागी तेजन जग माहे,
1: सदा सदा हर के गुण गाहे,
0: राम नाम जो करह बीचार,
1: सेतन बंद करे संसार,
0: मंतन मुख बोले हर मुखी,
1: सदा सदा जानो के सुखी,
0: एको एक एक पछाने,
1: एतो तीरो सोची जाने,
0: नाम संग जिसका मन मानिया,
1: नानक ने हर घर गानिया,
0: गुर प्रसाद अपने आप सुजे,
1: जिसकी जानो कृष्णा बुझे,
0: सा संग हर हर जस कहत,
1: सर्व रोग ते हरन रहत,
0: अंतन कीर्तन केवल वख्यान,
1: ब्रस्त में सोई निर्वाण,
0: एक ऊपर जिस जन की आशा,
1: जिसकी कटिए चमकी भाषा,
0: हर ब्रह्म की जिस मन भूख,
1: नानक जिसे न लागे दुख,
0: जिसको हर प्रभ मन चित आवे,
1: सो संत से हिला नहीं डलावे,
0: जिस प्रभ अपना कृपा करे,
1: सो सेवक को किससे डरे,
0: जैसा सा तैसा दृष्टाया,
1: अपने कार्य में आप समाया,
0: सोदत सोदत सोदत सीचिया,
1: और प्रसाद तत्सा रूजिया,
0: जब देखो तब सब किछ मूल,
1: नानक सो सुखम सोई स्थूल,
0: न किछ जन्मे न किछ मरे,
1: आपन चलता आप ही करे,
0: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट,
1: आज्ञा तारी तारी सब श्रेष्ठ,
0: आपे आप सगल में आप,
1: अनेक जगत रचता आप थाप,
0: अपना सी नाही किछ खंड,
1: धारण तारे ब्रह्मांड,
0: लख अपेव परख प्रताप,
1: आप जपाए ता नानक जाप,
0: जिन प्रभ जाता सो शोभा बंत,
1: सर्व संसार उतरे तिन मंत्र,
0: प्रभ के सेवक सगल उदाहरण।

0: सुख मान
1: भूला काहे फिरे अजान
0: कौन वस्त आई तेरे संग
1: लख रहो रस लोभी पतंग
0: राम नाम जप हृदय माहे
1: नानक पासे ती कर जाहे
0: जिस पकड़ को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: तज अभिमान लेहो मन मोल
1: राम नाम हृदय में तोल
0: लाद खेप संत है संग चाल
1: अवर त्याग भी क्या जंजाल
0: तन तन कहे सब कोए
1: जल हर दर कहे सोए
0: बापार बेला बापार
1: नानक ता कह सत बलिहार
0: चरण साध के तोए तोए पियो
1: हर प्रसाद को अपना जियो
0: साध की तूर करो स्नान
1: साध ऊपर जाइए कुर्बान
0: साध सेवा बड़ भागी पाइये
1: साध संग हर कीर्तन गाइये
0: अनक बिघन ते साधु राखे
1: हर गुण गाये अमृत रस चाखे
0: ओट गही संत है दरियाया
1: सर्व सुख नानक तह पाया
0: मृतक क्यों जीवालन हार
1: भूखे को देव तेरा हार
0: सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे
1: पूर्व लिखे का लहना पाए
0: सब कुछ तिसका हो करने योग
1: तिस बिन दूसर हुआ न होग
0: जप जन सदा सदा दिन रहनी
1: सब ते ऊच निर्मल हे करनी
0: कर कृपा जिस को नाम दिया
1: नानक सो जन निर्मल थिया
0: क्या कह मन गुर की प्रतीत
1: तिस जन आवे हर प्रचीत
0: भक्त भक्त सुनिए तै लोए
1: जाके हृदय को होए
0: सच करनी सच ता की रहत
1: सच हृदय सतमुख कहत
0: साची दृष्ट साचा

0: रंग राचन रहे
1: गुर के बचन पदार्थ लहे
0: विदाते दुख काटन हार
1: जाके संग करे संसार
0: जन का सेवक सो बड़ भागी।

0: जिसके कर्तव्य थे जात,
1: मारे न रखे अवर न कोए,
0: सर्व जिया का रखा सोए,
1: काहे सोच करे रे प्राणी,
0: जप नानक प्रभु अलख बढ़ाणी,
1: बार बार बार प्रभु जपिए,
0: ई अमृत मन तंत्र पिए,
1: नाम रतन जिन गुरमुख पाया,
0: इसके शबर नहीं दृष्टाया,
1: नाम धन नामो रूप रंग,
0: नामो सुखर नाम का संग,
1: नाम

तबंद मुक्त को किसको गनी तब नरक सुर को कौन अवतार तब शिव सकत कहो कित ठाए तब कवन निडर कवन कत डरे नानक ठाकुर अगमा पार।